समूह में आने पर्यटक स्वागत का शीर्षक में खबर उल्लेख नेपाल पर्यटन बोर्ड ने भोटे को सिद्धांत समूह में नेपाल भित्रिने पर्यटक विमानस्थल में स्वागत कर शुरू संस्कृति पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मंत्रालय को पहल में भोलि संचालन नौ अभियान सफल बनाने समूह में नेपाल भ्रमण आने पर्यटक विमानस्थल में खाना थाका टोपी लगाकर स्वागत करने पातो परिसरले अत्यधिक अत्याशित महाविपत्ति सूचक जानकारी कुमारले खबरले भनेको छ भने भित्र पृष्ठमा प्रकृति र संस्कृति जोड्न लालिका पदयात्रा परियोजना शीर्षकमा पनि कविराज घिमिरेले खबर लेख्नु भएको छ। त्यस्तै कारोबारको पहिलो पृष्ठमा 16% राजस्व वृद्धिले पनि फेला परेको लक्ष्य शीर्षकको खबर प्रकाशित छ। आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना सम्पन्नसम्म राजस्व सङ्कलनलाई 16% गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बुधबार सम्ममा कुल राजस्व

0: பற்றி கருப்பதனாலே தான் உருவாக்கிய கருக்கருத்து முடிவுகளும் ஜெனரல் பிரஸ்மாரும்
1: थाली भाषामा बर्की भनेको ठुलो र मार भनेको लडाईको लखारगेम जटिया राउबेट पासवार बनवास खरवास कठिया किस्का लगायतका अहिलेसम्म बर्किमारको बाह्र परिवार भेटिएको छ। बर्किमारमा 128 नयाँ श्लोक र कथा वस्तु थपिएको छ भने 820 श्लोक पुगेको छ।
2: संरक्षण

0: मैं तेरा सुरक्षित संपर्क होने लक्ष्य में
1: यही संपर्क पाने को ताजा सुरक्षित बनने को कहते हैं
2: दरवाजा सुरक्षित संपर्क करने

0: शरीर
1: को लेकर
0: बच्चा
1: विकिन्सा हो रहा
0: यंग
1: बंदी समस्या
0: भाई
1: बने
0: अस्तकर्ण पत्र आश्चर्य उसने दिखाया मोदी ने सायन
1: उन्हें बच्चा ना देखा पानी दोनों संतोष मन बोला सच्चा हमारे

तीन से ही सप्तरी विद्या सत रहेगा। शंकरी तो नगर तुलसी विद्या देकर आए तो नगर उप तुलसी विद्या कर नगर उप प्रमुख कर समय तक दोनों समय की बना कर तैयार को घर में जाकर मंगल को घर में देखते हुए समस्या में से राहत वितरण करने देखा दस कर और स्त्री जीत पुलिस समय की निर्णय देखना गांव बस्ती में इस हाट संकलन करना काम चाहते बेला कोड़ा की छोड़ चाहते बेलता था तस्करी नगर पालिका विद्या बाल नागरिक आदि संघ प्रकरण विश्व जन्म रोग संकट में देश में नेपाल बत्तीस स्थान में पड़ना आज पास करी नगर अस्पताल कार्यक्रम होना डेंगू रोग तथा जन्य रोग नियंत्रण तथा लड़ना कार्यक्रम वास्तव नगर अस्पताल प्रत्येक बड़े सहार सार्वजनिकरण पच्चीस से हाल साल विश्व भर में 68 लाख बड़े डेंगू रोग संक्रमित भरवाट ग्रसित 1600 जहां को ज्ञान बैठक में डेंगू रोग नियंत्रण का डेंगूकरण का लाख आज डेंगू रोग तथा किडनी रोग नियंत्रण तथा लड़ना पीड़ा कार्यक्रम को आयोजन करेगी वास्तव का सामुदायिक पुस्तकालय मसी शुरू कर गिरा संभावित पानी जन्य ठावना फोहर जमा होना संभावित ठावना जहाँ का पानी फकैदा हो सफाई करना मेरा मापी मिट्टी बजार सरसफाई करते फिर भास्कर के सामुदायिक पुस्तकालय में आकर समापन देखा भास्कर नगर अस्पताल का आयोजन भास्कर नगर पालिका के समन्वय में होने डेंगू रोग तथा किडनी रोग नियंत्रण तथा लार्वा पीड़ा नष्ट कार्यक्रम

0: नमस्कार मेरा नाम रमजान चौधरी राष्ट्रीय नगर पालिका वार्ड नंबर 4
1: सही हो ज्ञान बाँचेको धन ज्ञान नभए के हम के हो द्वारा सबै कुरा सम्पलित

0: है 4.9% प्रतिशत। बाजार में मूल्य वृद्धि उठाए दैनिक में कस्तो प्रभाव पर्छ हामीले अर्थवेद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी सँग सोधेका छौँ।
1: व्यापारी मुनाफा थप्ने तराई चलाउने अथवा दैनिक चलाउने

0: निरंजन खाता साइकिल आकर रहेगा। चार सिकरों सबसे पहले आकर रहेगा साइकिल आकर ऐसे बनाए। पांच श्री सोरू तुलसी जॉर्डनी। छह श्री सुरेश कुमार कोंडर इसराइल। सात श्री कार्तिक शेखर स्पेन। आठ श्री जितेंद्र कुमार कोटा जापान। नौ डॉक्टर चक्रवासी वादा ईरान। दस श्री चौधरी कॉलेज मलेशिया। ग्यारह प्राध्यापक डॉक्टर संजय श्रेष्ठ कोरिया भारत कोरिया। बारह डॉक्टर मंसूरा झा श्रीलंका। तेरह श्री गिरी बहादुर सुधा संजय।
1: सरकारी व्यापार ब्यूरो प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दीर्घायु कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ। आज बसेको मध्य परिषद बैठकले श्रेष्ठलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको सरकारको प्रवक्ताले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। प्राधिकरणमा निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहनुभएका श्रेष्ठले कार्यकारी

सहायता दुर्लभ से कृषिका मशीन के कृषि सूचना पर आधारित सरकार कर्म ऐसी खराब लागत माने था

0: ठीक 845 मिनट के बाद आप सुनिए बीबीसी 47 सेवा।
1: सुगमता को प्रार्थना करें कि मैं सर्व फिर आपका विस्फोटक पदार्थ ले पाइए को एक सहभागी साधन।

যতটা বিপদদর্শী মনে করে তার একটি প্রমুখ বিরাট চেষ্টা প্রধান সঠিক সঙ্গে ধরাচ্ছলে প্রায় দোকান নেপালका विभिन्न एजेन्सी विशेष सम्बन्धबाट बीबीसी नेपाली सेवाको साझा प्रकाशन गर्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रम बीबीसी नेपाली डटकममा गएर आफूले चाहेको सम्बन्धन पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। बीबीसी नेपाली सेवाका सामग्री रेडियो अनलाइन र सामग्री

0: कारण सुखाए स्वस्थताए सुरक्षित परिवार
1: रेडियो दुर्गा एफ एम द्वारा सामाजिक रोजगारी संदेश
2: आगा।
0: आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा। आगा।